0: अशोक साल त ढुक्क नारे बत्ती
1: हाँ त पोर्सालिक बाघ सम्झोट हामी इन्डोर लक्तिर हटबरा पानी बस्दा बेर अस्ट छिमसाम कहाँ र सेक्दायो त सोचो त लट्ठी ठिक्क घर डान डान पानी बर्ष टिकी मन छटपटाइ लाग
0: हाँ त धन्न ब्यालम्ब टिकटिकम सुरक्षित ठाउँमा सरली नारी बत्ती
1: हाँ हो बदा
2: बर्खक ब्यालमा बहिनी ध्यार जोखिम रहत उहमा र बहिया से बचकला पहिला सावधानी अपनाए लड्डिया खोलम पानी बरल बाकल से सावधान रही एम्बुलेंस सुरक्षा निकाय स्वयं सेवगन के संपर्क विवरण तक सूची बनाई एक चुट्टे प्रयोग के लाग झटपट झोला तैयार पारी वो बरखक ब्यालम संक्रमण के डर ध्यार हुलक ओर से पानी ढिका के पी स्वच्छता में ख्याल करी
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
4: रेडियो टाइगर 79.2 मेगाहर्ज नामै काफी छ।

देखें हमें झूठी लायर ना काला चश्मा चचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला दिल जचता है तेरे चिन पे अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में।

0: सुन
1: बेबी मुझको पता है तेरा मन है बड़ा, दबी फ्लोर पे तेरी वेट में हूँ खड़ा, ऐसे बैठे बैठे तू शोल्डर ना हिला, थोड़ा पैर उठा सानू नच के वगा।

प्रिय मैगर कविलाहुक्र जय मसीह और नमस्कार। मैं अपना हुकन के सामु महात्मा प्रसाद चौधरी आगिलाटो आज हमरा परिवार का न शीर्षक में वचन हेरा जाए। कविलाहुक्र आज हाम्रो संसारका सबसे महत्वपूर्ण सिकाइना ठाउँ बारेमा बात बताइजाए। जुन ठाउँ चाहिँ परिवार हो, शैतान ढ्यार तरिका से परिवारमा आक्रमण गर्छ, जुन बात मैं अचम्मित नै बनाइछ। काकरकि परिवार चाहिँ आधारभूत ठाउँ हो, अपना हुकन थाहे बा परमेश्वर थारू ओ जन्मिकैका मानव जातिक शुरूआत कैला। परमेश्वर सिक्ना ठाउँको रूपमा परिवारका निर्माण कैला। परमेश्वर थारू जन्मीद्वारा लड़का बच्चा उत्पादन कैला। ओ यी पारिवारिक परमेश्वरका परिकल्पना कैलक बाट हो। ओहर से शैतान परिवारमा आक्रमण करती रह। आज काका ध्यार परिवार अनैतिक काम से परिवार टुक्रती बा। काजे क्रिश्चियन मण्डली फे विवाह विच्छेद का बात महत्व पहिला बात महिन माफ कर भी मैं इस सब बात बताई दू। ये बात महिन डर लगाए कि संसारिकपन अविश्वास का कारण आज मण्डली में रहल परिवार एकदम दुखित हमरा देखती। का ये बात हमार लाग डर लगती दुखक बात नहीं होता। ये चाहे एकदम नहीं हुई ना बात हो। आज संसार परिवार में ध्यार नहीं मजा प्रभाव छोड़ती बा। वो अनैतिक संबंध चाहे शैतान चलेलक हथियार हो। मने हुकर विचार करता ये चाहे थारू थारू बीच हुई ना बात अथवा एकल लिंग रहल मने हुकर बीच में हुई ना हो। ओ कतरा जना संबंध है भाज का उपमा फिर देखा। ये मेरी बात आजकल हमार नेपाली समाज में और नेपाल देश में हमार ठाव में हुई थी जाए था। ये बात से यह प्रमाणित हुई था कि परिवार में फिर आक्रमण हुई थी बा। परमेश्वर परिवार का परिकल्पना कैला ओ बनेला। तर ई मेरिक परिवार नाही जाति कहवेला। जब अपना एक थारो जन्नी है हेरवी हुकनक लड़का बच्चा रथिन ओ लड़का बच्चा परिवार का एक हिस्सा रठा। तर ई लड़का बच्चा न पहिना से शुरुआत चाहे थारू ओ जन्नी की यात्रा से शुरू हुई था। पहली बात तो बुझी थारू ओ जन्नी कसी का हुई पर था या कर लाग अपना पहलो पत्रुस का पुस्तक है। पहलो पत्रुस तीन अध्याय भुआजक बारे में बताए थे। ई घटना में विशेष कई का विश्वासी जन्युआ हुकरन पावल कथा जे विश्वास नै करल मनैया से भुआज करल। ई कसी का हुई हमन ठा नहीं हो। हुईसे की उकरा दुनो जे विश्वास कर सकी। इफे हुईसे की भुआजक पाछा उकरा दुनो जे विश्वास से पाछा हटा सकी। हुईसे की लौंडी विश्वासी हुई वो लौंडा चाहे विश्वास करने इनकार कर सकी। वह वर्षे पावल सीखे था कि कसी का एक जन्नी मनैया व्यवहार करना वही एकदम महत्वपूर्ण बा। ओसे के साथ पद मा के क्रिश्चियन थारू मनैया अपन जन्नी है कसी का व्यवहार कहना करना बात है बात बटेल बाट। ई दान से बृहत रूप में बटेल बा। ई थारू और जन्नी मनैया के संबंध है यीशु और वहां मंडलिक संबंध से उजागर कैल बा। ई चाहे एकदम सुहावन संज्ञा हो। मंडली यीशु ख्रीस्त का दुलही हो। ई बात कारण ले क्रिश्चियन परमेश्वर का परिवार का मनै हुकर कई का धर्म शास्त्र देखा लगा। हमारो परमेश्वर का संतान मिटिका न बाट अपना देख। अब अपने ये मेरे विचार हैं ले ली वो अब हमारा फेसबुक परिवार का न बात हम जाए। का यीशु परिवार जोर जाम करक लागि संसार में आईला। ये बात है एक अच्छी सोची। जब यीशु स्वर्गरोहण हुई ला वहाँ 33 वर्ष तक रहा। यीशु इस संसार में जवान होकर आई सकता तर वहाँ उसी नहीं कहला। वहाँ शुरुआत से गईला कन्या मरियम का कोख से जन्म लेला। परमेश्वर वहाँ वचन खाम में धरा सक यीशु यहाँ कोख में पठेला। मानव रूपी चोला लेकर इस संसार में जन्म ले। और से यीशु शुरुआत

परमेश्वरका योजना चाहिँ मण्डलिक योजना हो। यी बारेमा एफिसी पुस्तक दान्चे बाठमन बताएत कि मण्डली परमेश्वरका परिवार हो, ऊ परिवारका मुख्य अथवा शिर परमेश्वर हुई त, तर परिवारका विचार चाहिँ आफ्नो परिवारमा स्वीकार योग्य हुइल बात, आफ्ना दाई बाबा आफ्ना हेप ध्यार प्रेम गर्था, यी चाहिँ उहाँ बारेमा बुझ्ना तरिका हो। यी बारेमा एकचोटि सोची मै मेरी खत्तम नम्बरानका घर जाइ नै सेकम, जब मै उहाँ जिम महिना सबसे दुई चार बात सुनै सबको दुई चार बात लगाई ही मोर बारेमा नै मजा सोची वाकर लाग का अपना अमिन मजा कर सकी मजा कराइक लाग हमारा का कर सकी अस्त शायद अपना सोच कबिला हूँ शायद अपना जीवन में यह मेरी खाँचो हुई यदि वो ध्यान नहीं दे हो गृह कार्य नहीं हेरत हो और नहीं करत हो या कर अर्थ अपना उन्हीं ग्रहण करी कलक नहीं हो बरू कही मई तुहिन अतरा आशा कैल रन हो तर यदि ऊ प्रयास करती बा वो नहीं उठो कला से उन्हीं स्वीकार करी वो अपन लड़का बच्चन और जहान से टुलाना जीन करी वो टुलाना कतरा घातक हुई कना का अपना जन्म बाजी था वैसे कि अपना बच्चा खेलकूद में मजा हुई और बच्चा पढ़ाई में मजा हुई हरेक बच्चा जुन परिस्थिति में रहा घर में स्वीकार करक पर्था हुकनक हरेक काम में अपना हुकनक प्रशंसा करी हौसला दी ये चाहे प्रेम से देखाई और प्रेम हाँ दिखाई थी बात चाहे ये चाहे आत्मक क्षमादान है जनाई थी ये चाहे कतरा महत्वपूर्ण बा असीन का बच्चा हुकरा और मन हुकन क्षमा दिया प्रथा खना बात सीख था कबिला हुकरा देख ली मंडली कहाँ समावेश हुई यहाँ ई मेर से मंडली काम कर सकत जब विश्वास में नहीं रहल मन हुकरा मंडली में था मंडली हुकन स्वीकार कर सक कई हुकरा स्वस्थ हुकरा जुन मेरी अवस्था में रहा मंडली हुकन स्वीकार कर पड़ता हुकरा मंडली से स्वागत पाई पड़ता जहाँ लड़ाई झगड़ा दोमन नहीं हुई पड़ता जहाँ एकता प्रेम और शांति मंडली इस सब काम प्रेम में हुई पड़ता येसु कला असी का तुरह मार चेला हुई टोगे का प्रमाणित कर सकबो मार संतान प्रेम में एक और जहां हुकरा एक और जहां प्रेम करता क्षमा करता वो हमार मंडली असीन जब विश्वास नहीं करल मने हुकरा आईटा मंडली में कला से कुछ मदद हुई सांत्वना पायल आशा पायल क्रिश्चियन मंडली भेटाई से का करे की मंडली में प्रेम रही यदि मंडली में आशा बा ऊ मंडली में सांत्वना बा ऊ मंडली में कुछ सहायता करू या मन हुकरा बात कला से आकुर मन फुकरा फे मंडली मा ख्रिस के प्रेम ख्रिस के ऊ आनंद पाई से क्षमदान में रही सहजता रही आशा रही जब ये सब मंडली में रही कला से खतरा सुहावन मिल गई ओर से परमेश्वर क्रिश्चियन परिवार चाहता ओर से मंडली विश्वासी न परिवार बना कई कमा चाहता ये चाहे बड़ा महत्वपूर्ण विचार हो ये विचार है अपना पक्के फे मनन कर भी कई कमे आशा कैला बात वही सब बात हेरती पत्रुस तीन अध्याय पूरे हेरबी ई बात हम बुझक लाग आई मीन आकुर ध्यार अपना है सहायता करी परमेश्वर आज की वचन द्वारा अपना है ध्यार आशित है।